तो अज असि शरीर तो बाहर की जो अवस्था है उसके मुतलक सुन रहे हैं। एक प्रमाण सुनाया है, कुछ एक पंक्तियां होर सुनो। महाराज जी आखते हैं, इथे तुसी अपने भैणा भरावां दे नाल कितने इनवॉल्व हो, थोड़ी समझण वाली गल है, कितने अटैच्ड हो, कितने कंसर्नड हो, पर ये भैन भरा तुहाडे नाल कित्थों तक जाणगे।

कौन व्यवस्था भी निराकर गौड़ी गुआरे दी सतगुरु जी ने इसरा को गुरु ग्रंथ साहब के बीच तीजा स्थान दिता है। ये भी बहुत वड्डा राग है गुरु ग्रंथ साहब के बीच गौड़ी गुआरे दी अते मारू दो राग सतगुरु जी विच बहुत वड्डे बहुत बाणी उच्चारण किए इन्होंने राग विच आओ ये शाम का राग है गौड़ी गुआरे दी जब वो इस शब्द नो मेरे जगदीश मिलन की बरिया चिरंकार यह देश संदेरिया सतगुरु जी ने गौड़ी गुआरे विच

से वापरवान दुनियावी कम्बा का जल जा के सूर के लिए इस वेले दरबार में गुरु दरबार में विशादगी भरिए अते हम आप जी अमृत ने कीर्तन रागा दे विच गुरु ग्रंथ साहिब दी मर्यादा अनुसार गुरु अर्जन साहिब दी मर्यादा अनुसार सर्वन कीता है स्वतंत्रता दे आओ अत दे विच सर्वक माई भाई जिथे गुरु चरणा च बैठे हो छोरी आड़ के ही अरदास बेनती चौधरी करनी है सतगुरु दाता अग्गे हे काल पुरख सर्व शक्तिमान परम पिता परमेश्वर कृपा करो साडे छोरियां विच अपने पवित्र नाम दी खैर पाओ आओ जपो सारे लवाओ हाजियां कोई रिश्ता खाज ना जाए।

एक ताल दो ताल हूं तीन ताल श्रवण कर लो नहीं जी दो ताल हो गया हूं तीन ताल जो प्रभ कीनो सो भल मान्यो इस मत साधु ते पाई

प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह, सतगुरु साहेब श्री गुरु अमरदास जी महाराज अपने इस पावन पवित्र श्लोक दे विच ओपन आख रहे हैं, जो शायद साडे कदी ख्याल च भी ना दे, गुरु बाबा जी साडे जीवन नू जिस तरह असी जींदे हां, अपने वालों तो असी सही ही जींदे, पर गुरु बाबा जी दी ऑब्जर्वेशन साडे जीवन दे प्रति ए है कि जीवन की बिद ना है। अगर आप जी इस पंक्ति नू नोट कर लो ते लिख के ते हर वेले सामने रखो, ताकि ए सानू रिमाइंड करांदी रहे कि बेशक असी ग्रो हो गए हां फिजिकली, बेशक असी इंटेलेक्चुअली भी ग्रो हो गए हां, बेशक असी सो कॉल्ड सिविलाइज्ड हां, बेशक असी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी दे युग दे विच जी रहे हां, पर गुरु बाबा जी दी निगाह दे विच, गुरु बाबा जी दे ख्यालां दे विच आले सानू जीना ही नहीं आता, तो कितनी बड़ी गल है। और इसनू जो ध्यान दे नाल सुनेगा उस दे अंदर ए विचार, ए लाइन एक तूफान उठा देगी, एक टर्मोइल ले आएगी, एक सोच विच इंसान नू जरूर पाएगी कि सच मैनू जीना नहीं आता, कि मैनू जीना ही नहीं आता। जे मैनू जीना ही नहीं आता फिर मैनू आता की? फिर इसका अर्थ यह होया कि जब गुरु बाबा जी आखते हैं कि जीवन की बिद ना है, जीवन की विधि ही नहीं आती, जीना ही नहीं आता, जीवन की कला ही नहीं आती, आर्ट ऑफ लिविंग जो है वो ही नहीं आता, तो फिर की मेरा बाकी सारा कुछ जो कुछ मैं करता हूं वो गलत नहीं होएगा? फंडामेंटल चीज जो है कि जीवन की विधि नहीं आती, जीवन की विधि नहीं है, तो फिर तो मेरा सब कुछ ही जो मैं सोचता हां सही करता हां वो गलत हो गया, अपने आप ही गलत हो गया। पर ईमानदारी के नाल प्लीज ट्राई टू रिफ्लेक्ट विद इन एंड आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ कि कितनी दफा असी अपने आप नू एक कदे वंडर कीता होएगा कि मैनू जीना आंदा भी है या नहीं, जीना आंदा भी है या नहीं। मेरे ख्याल च असी ये सोच नहीं सकते, मेरे ख्याल दे विच असी अपने प्रति ये डाउट भी नहीं कर सकते कि सानू जीना नहीं आंदा, बिकॉज वी नो हाउ टू ड्रेस, हाउ टू कुक, हाउ टू ईट, हाउ टू सोशलाइज, हाउ टू कम्युनिकेट, सब कुछ सानू आंदा है, तो फिर असी किस तरह कह सकते हैं कि सानू जीवन की विद ना है, जीन की विधि ही नहीं आती। गुरु महाराज जी, गुरु अमरदास जी महाराज जी की इस लाइन में हुण बहुत समाधि लगाओ, अखां बंद करके प्रेम दे नाल इन्हां वचनां नू
ओ रबी नूर, रबी आत्मा जो साडे जीवन नू देखती है कि उपरों उपरों तो बहुत फले फुले हैं, बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, लेकिन विच की है। आप आसा जी की बात सुन दे, मैं आपको फिर सुना देना। फलिए फुलिए बपड़े विचारे देखने बहुत फले फुले पे हैं, प्रॉस्परस हैं, वेल टू डू। फलिए फुलिए बपड़े भी तन विच सुआ, पर अंदर तन दे विच सुआ है, कुछ भी नहीं राख। पर इंसान दे वास्ते बहुत चोट वाली गल है कि मैं और मैनू अज ये सुनने मिल रहा है कि मैनू जीण दी ही विधि नहीं आती। अज कोई मैनू ये कह रहा है कि मैनू जीना ही नहीं आ। आप जी ने कितनी दफा इस पंक्ति उत्ते कदे पाउंडर किया होगा। ईमानदारी दे नाल अपने अंदरों ये जवाब लभो कि कितनी दफा ये गल सुनन नू मिली है, कितनी दफा ये गल ही सुनन नू मिली है, कितनी दफा किसी ने ये पॉइंट ही रेज किया है जा सानू अवेयर करवाया है कि तुहानू ते भी हले जीना भी नहीं आता। पर असी आके महाराज जी नमस्कार कर सकते हैं, हुण महाराज जी नू असी चैलेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि साढ़े गुरुदेव हैं। अपने गुरुदेव नू असी क्रॉस भी नहीं कर सकते, उन्हां दे नाल असी डिसएग्री भी नहीं कर सकते कि महाराज जी नहीं आपने लिख तो दिता है पर ऐसी भी कोई गल नहीं है, जीना सानू आंदा है, यह भी असी कह नहीं सकते क्योंकि सानू पता है कि जो गुरु बाबा जी आखते हैं त्रिकाल सत। सो अज वो मौका है कि असी, मैनू नहीं पता शायद ये पंक्ति आप जिन्हों पहले किसी ने इस उत्ते मैनू नहीं पता शायद ये पंक्ति आप जिन्हों पहले किसी ने इस उत्ते एम्फेसिस पा के कही होए कि साड़ी सिचुएशन ए है, नो मैटर हाउ एजुकेटेड वी आर, नो मैटर हाउ सक्सेसफुल वी आर, नो मैटर व्हाट वी आर एंड वेयर वी आर, बट द बॉटम लाइन इज वी डोंट नो हाउ टू लिव। सानू जीना ही नहीं आना, जीवन की विद ना है। प्यार नाल इस मंत्र में सुनो।

आप जिन याद होएगा जिस पंक्ति उते कल दास ने कीर्तन छोड़िया सी, आप जिन बेनती की थी सी इस पंक्ति नु अपने नाल लेके जाओ, वो केड़ी सी? गुरु महाराज गुरु अर्जन देव जी आखते हैं कि मेरे जीवन दी यात्रा सफल हो गई। सफल सफल भई सफल यात्रा, मेरे जीवन दी यात्रा सफल हो गई। हुण जिसनु जीवन जीना आंदा है उसे दी ही जीवन दी यात्रा सफल हो सकती है। जिसनु जीवन ही नहीं जीना आंदा वो किथे पहुंचेगा? वो किथे भी नहीं पहुंचेगा। तो जीवन एक यात्रा है और उस यात्रा के दौरान असी जो कुछ भी करते हैं वो असी गलत करते हैं, क्योंकि सानू जीवन की विधि नहीं आती। जीवन की विधना है, असी सोचते हाँ असी सक्सेसफुल हो गए, असी कामयाब, पर सक्सेस के उत्ते जो गुरु महाराज जी का अपना विचार है, जो गुरबाणी की रोशनी है, असी बींग ए सिख सक्सेस नू गुरु बाबा जी तो ही समझना है ना, कि गुरु साहब सक्सेस किसनू आखते हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी गुरु नानक देव जी महाराज दी निगाह च सक्सेसफुल कौन है, सक्सेस की है? वो है कि जीवन दी यात्रा सफल हो जाए, जीवन जिस मंजिल ते पहुंचना चाहिदा है उथे पहुंच जाए। बाबा जी सक्सेस दे उते शब्द उचारदे हन, कहंदे हन

प्यारी गल आ समझण वाली। स्त्री पुरख है खटिए भाव, स्त्री अते पुरख, स्त्री वास्ते पुरख अते पुरख वास्ते स्त्री एक प्रोडक्ट की तरह रह गया है कि इस तो मैनू मेरी जिंदगी च की फायदा हो सकता है, मेरे लिए बेनिफिट्स की हैं। मेरे स्वार्थ के में पूरे होते हैं, मैनू सुख इस तो किमें मिलता है, ये नहीं कि इसनू मैं तो सुख किस तरह मिलता है, नहीं, दोनों का टारगेट है कि मैनू सुख किमें मिलता है। खट्टी का भाव कि मैं की खटदा हां, वट आई अर्न आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, अते वो सारे का सारा वर्ल्डली सेंस दे विच। अगर कहते कुछ नहीं मिलता जो एक्सपेक्टेशंस होंदिया हन, वो एक्सपेक्टेशंस अगर पूरिया नहीं होंदिया तो कहते दोनों के दिलों के विच की आ कि भावें आओ तो भावें जाओ।

एक कबीर साहब जी का बेनती का शब्द पांच सात मिनटां विच पढ़ के समय सिर समाप्ति ते पातशाह ने मेहर कीती है जिन्हां जिन्हां ने हाजरियां भरियां हन तुहाडियां हाजरियां पातशाह लेखे लावन। कबीर साहब जी निरंकार दे बूहे अगे कुछ इस तरह की बेनती करते हैं पढ़ के समाप्ति।

पितर जो राम बसत है सचो ताहिं पछानो। तो प्रवाति शब्द ते आए छोड़ो दुनी परिता, छोड़ो दुनी परिता ए मन प्यारा।

0: परियो रामदास
1: हर जियो नाम परियो रामदास
0: हर जियो नाम परियो राम दीन दयाल कृपाल सुख सागर
2: सर्व
0: सर्व कथा
2: पर पूरी रे
0: एकत सुनत सदा है संगे
1: एकत सुनत सदा है संगे
0: मूर्ख जाने पूरी ने
1: हर बे अंत हो मित कर बरनो
0: क्या जानो
1: कैसो रे
0: क्या जानो
1: कैसो रे।

बस दंगे मुकरमा है जैसे छाय जैसे गी हर बसे नरंतर कटकी भोजो पाई बाहर।

0: कहूं अरबी तुर्की पारसी हो, कहूं पहल भी पश्त भी सहस करती, कहूं देश बाकी
1: देवानी, कहूं राम राज विद्या।

कौडी बदले त्यागे रतन छोड़ जाहे वाहूं का जतन सो संचो जो हो छी बात माया मोया टेडो जात अभागे तै लाज नाई सुख सागर पूरन परमेसर हर नाचे त्यो मन माही अमृत कौड़ा बिखिया बीठी साकत की बिद नैनो डीठी कूड़ कपट अहंकार रिझाना नाम सुनत जन बिछू डसाना ओ माया कारण सदही झूरे मन मुख कवे न उस्तत करे निर्भव निरंकार दातार तिस स्यों प्रिय

कतहु सुचेत होय के चेतना को चार किया, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो। साहिब गुरु गोविंद सिंह साहिब जी बहुत प्यारी रचना अकाल उस्ताद विच फरमान दी।

आओ भाई, आज दे दिन अरदास करिए। पातशाह, साडे हिरदे विचों नफरत दी आंधी जो चलदी है उस नूं मिटा। बख्शिश कीती सी आप जी ने भाई कन्हैये उत्ते, जिस वेले उसने दुश्मन नूं दुश्मन ना समझिया, फिर तू सिख हो के सिख नाल नफरत करें, गल बनेगी। कदी भी खून नाल खून नहीं तुलदा, पानी पाया ही खून तुलदे। नफरत नाल कदी नफरत खत्म नहीं होई, ओदे उते प्यार दा पाना पानी पाना पएगा। साच कहो सुन ले हो सबै, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पाए। बाबा गुरमुख सिंह जी एक गल आखदे हुंदे ने, तुसी किसे दे घर चले जाओ, तुसी उन्हां नूं कहो मैनूं प्यार दिओ, कोई नहीं देगा। पर जे तुसी खड़ के कह दिओ आओ लोको मैं तुहानूं प्यार दियां, हजारां लोग तुहाडे कोल आओ। पहल तू करनी है, प्यार असा देना है लेना नहीं। देवे तो ठीक है, पर असी कहने इन्हें फतेह नहीं बुलाई, असी क्यों बुलाइए। ना भाई, वह नहीं बुलांदा, तू बुला ले, तू प्यार कर, तेरा फर्ज है। हंकार ते नफरत दी आंधी विच ऐ मेरे पातशाह, जिवें तुसी मलम ते पट्टी दे दित्ती सी, मानो गाउंदा गाउंदा यही कुछ कह रहा सी। भावे कोई मोमन वेख रहा है, भावे कोई पहाड़ी राजा है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, पानी मुंह विच देंदा होया एक कोई पुकार है, केड़ी

कऊ जच गंधर्व उरग कऊ विद्याधर कहू भय किन्नर पिशाच कहू प्रेत हो कहू हो के हिंदू आ गायत्री को गुपत जप्यो कऊ हो के तुरका पुकारे बांग देत हो कहूं को कुकाब होए के पुराण को पढ़त मत कतहूं।

कहूं देवतान के दीवान में विराजमान, कहूं दानवान को गुमान मत देत हो। कहूं इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी, कहूं इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो।